एक पग गुरु हरगोबिंद साहब ने बनी जिदे ते केसर दे छिटे जहांगीर नूं भी लोग मत्था टेकदे ने पर उस तों डर के

हंसने के सामने चला जा। बादशाह दा तंबू सामने लग गए, ए सिख तुरदा तुरदा जहांगीर दे तंबू विच चला गया। पैरां विचों जुतियां बाहर ला दितियां, तीन पैसे पल्लियों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठा है, कोल इदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नूं खिच ना पई, हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे बादशाह मेरा जन्म मरण सवार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया, ते नाले कहा, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा, हां जे तू कवे हेरे जवाहरात महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने कहा, ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा, जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है।

बादशाह पर सिख ने मेरी कीमत तीन पैसे भी नहीं पाई। दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे।

तंबू च पैर पाया मन खिचिया गया क्यों महापुरुषा नु मिलिए ता मन जिड़ा है वैराग विच आ जांदा है श्रद्धा विच आ जांदा है किस दुनियावी आदमी

कैंडी लोड़ी ना पई कि जन्म मरण सवार दे सहबां दे चरना दे वो तीन पैसे रख के मत्था टेकिया बिना मंगिया सब कुछ मिल गया हुण फैसला सुनन वालिया ने करना है कि पग किहदी उच्ची एक पासे बादशाह है ओहदे सिर ते भी पग है एक पासे गुरु है ओहदे सिर ते भी पग है पर पगां विच फर्क ए एक पासे

गुरु साहिबां नालों विछड़ गए। सरहंद दे नवाब ने माता गुजरी जी नूं अते छोटे साहिबजादियां नूं

बड़ी कोशिश की थी पर साहबजादिया चुका ना सके। आखिर फैसला दिता इन्हां नीह दे विच चिण दियो, नीह विच खड़े करके

मौत तो डर नहीं लगता, रोना इस करके आ गया कि दुनिया विच मैं पहला आया सी, तू मेरे बाद। मेरा हक बनदा पहला मैं शहीद होवां, पर वीर

मैं भी तुहाडे नाल प्यार करना, पर मैं उस बादशाह दे अगे सिर नहीं झुकाना। हार मान लवा, अपनी पग झुका दे आ, एक बादशाह दे अगे सुलाह कर लवा, यह कह के मैं हार गई हां, पर मैं हारिया नहीं। मेरे पुत्र शहीद हो गए, कोई सिख मेरे कोल नहीं, घोड़ा भी मेरे कोल नहीं।

0: कहते हैं मैं परम गति पा ली हूं, सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरुदेव मिलाप दी पा ली है। भक्त रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल एकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संग है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हैं जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन इह जिहड़े कच्चे हन इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहानां दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जिहड़ियां हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहते जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 सालों के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वो चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती है। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतो भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे द सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं ये सारे द सारे फौरन पाड़ सीते, डिले नहीं किए। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठी ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठी गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसको सुनो, फिर उसका अर्थ करांगे।

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his life within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaav kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai,

कौम दे महान विद्वान उन्हां ने संगत दी महानता दर्शाई है। ओ कहंदे ने जिवें चंदन अपने लागे दे बिरछां नूं भी ओदां दा बना दिंदा है, संगत कदूरत भरे मन वाला बंदे नूं भी अपने वर्गा बना लैंदी। चंगा बंदा संगत विच आवे, गुरु पातशाह दे दर्शन करे, ओ तां चंगा ही है। तां जे माड़ा भी कदे आ जावे ते ओ भी साहब दे चरण परसे, गुरु का कीर्तन सुने, संगत दी सेवा करे, साहब ओदे ते भी बख्शिश दी रहे।

मेरे उत्ते कृपा करो, मैनू ओ आत्मक सुख ओ आत्मक आनंद उस दा कोई टंग दसो जिस दे नाल तृष्णा बुझे, मेरी तृष्णा जो बुझ जाए, मन तृप्तावो अते मेरे मन नू तृप्ति आ जाए। असी सारे अपनी जिंदगी दे विच बड़ा सुखी रहना चाहने, डीप डाउन जो साड़ी ख्वाहिश है, जिस दे ले असी जिंदगी दे विच इतनी सारी एफर्ट करते हैं, वो इस गल करके है कि सारी जिंदगी सानू कोई दुख ना आए, कोई साड़ी जिंदगी दे विच बैरियर ना आए, कोई रुकावट ना आए, किसी किस्म का कोई

लेकिन हैरानी की गल यह है जितना असी जिंदगी ज्यादा सुख चाहते हाँ जितना असी सुखी रहने की कोशिश करते हाँ आउटकम जो है वो कुछ होर है। जिंदगी उतना ही वधेरे दुख आई जाता है, उतनी ज्यादा पेन अते पीड़ा साड़ी जिंदगी।

अनेकां किस्म दे नाल इंसान अपने आप नूं सुखी होण दी जो कोशिश करदे हन, लेकिन सारे शब्द दी जो विचार इत्थे टिकी रही है कि किसे तरह भी मन सुहेला नहीं हुंदा। गुरु साहब फिर अगां चल के हुण दसदे हन, आओ अगली पंक्ति वल नूं वधीए कि सुहेला सुखी किस तरह हुंदा है। ओ कहंदे हन असीं अपनी जिंदगी दे विच सोचदे हां कि साडे पास धन आए ते असीं सुहेले हो जावांगे, सुखी हो जावांगे, लेकिन तजर्बियां तो यह पता लगता है कि साडा ए धन पदार्थ से बहुत ज्यादा गिनती इकट्ठा कर सकता है लेकिन सुख नहीं इकट्ठा करता। फिर ओ केड़ा धन सानू चाहिए जिस दे नाल असी सुख भी हासिल कर सकी, उसका अगली पंक्ति जिक्र करते हैं। कहते हैं

0: मुट्ठी चापी करनी, चरण घुटने, उन्हां नूं सुख देना, क्योंकि अमृत वेले ओही जाग सकदा है जो समय सिर रात नूं आराम करेगा। ते गुरु के सिख मुट्ठी चापी करके बड़े प्यार दे नाल गुरसिखां नूं सवाया करदे सन। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: ये पूरने सिर्फ सिखां ही ने नहीं पाए, जदों काबल तो संगतां आईयां ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह आप भी पिपली साहब गए, गुरु का लंगर बना के उन्हां दे धर्म सपत्नी माता गंगा जी दोनों जने जा रहे हैं गुरु के दर दी, गुरु के सिखां दी सेवा करन लई। धन गुरु अर्जन देव पातशाह पखे दी सेवा कर रहे हैं ते जगत माता गंगा जी सारिया दी जल पानी दी सेवा कर रहे हैं। ते जदों संगतां नूं लंगर छका लिया ते हुण जगत माता गंगा जी हाथ सुचे करा के ते संगतां दे जूठे बर्तन मांज रहे हैं ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुठी चापी कर रहे हैं। आप समर्थ पुरख होंदे हुए, सर्व कला समर्थ आप होंदे हुए भी एडी सेवा दे पूरने पा के दसे पंजवें गुरु नानक, जिन्हां दी उस्तत करदिआं पट्टां ने कहा कि गुरु अर्जन प्रतख हर, गुरु अर्जन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। एडी वड्डी हस्ती होण दे बावजूद धन गुरु अर्जन दे पातशाह किवें सेवा दे पूरने पा के सानू दसे। शामा दा समा है, किसे ने पछाणिया नहीं कि जिन्हां दे दर्शनां नूं असी आए हां ओही साडी पखे दी सेवा कर रहे हैं, ओही जल पानी दी सेवा कर रहे हैं, ओही मुठी चापी कर रहे हैं। ते जिदी भी मुठी चापी करदे हन ओ सिख आशीषां दे रहे हैं। धन है गुरु के सिखा, तेरा जीवन धन है, तैनू नाम चित आवे। वाहिगुरु ने जो तैनू सेवा दा प्यार बख्शा कोई सेवा दा किनका गुरु साडी भी चोली पावे। इस तरह दियां आशीषां लै रहे हैं गुरु अर्जन देव पातशाह आप प्रतख हर।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख, तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधिया विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ, दुनिया दे सुख, ए टुटे हुए कच दी दियाई हन। जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन, आ वेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन कि किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना ले जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ, जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके ले जाए, रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला, उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है, अपनी उठदा है, पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या, ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है, तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नूं खरीद के अपने आप नूं बड़ा धनवान समझना, बड़ा बलवान समझना, भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन, ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन, जदों एक धनवान गुजर गया, शरीर छड़ गया, ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना, ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया, ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चलिया, उसे वेले तोड़ लई। कबीर जी वेख के हैरान हो गए, आख्या कौडी कौडी जोड़ के, जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई, नाल की जाएगा? हजूर कहंदे नाल इना जिहड़े अमोलक श्वास तेरे हन, इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा, ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन, बड़ा अमीर सी, हजूर कहन लगे नाल तां इक सूई भी नहीं जानी, ते तू इना धन कट्ठा करी फिरदा है। कहने लगा महाराज कृपा करो, मैं बड़ी औखी कमाई कीती है, ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल ले जावा। हजूर कहने लगे भाई नाल तां ले जा सकना है तू, जे साडे आखे लगे महाराज हुक्म करो। कहने लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़ बंदा नूं वंड दे उहदे नाम ते, ते तेरे नाल चली जाएगी। उच्चारण करो श्री, इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन, ओ मित्रा धन तां तू नाम दा इकट्ठा करना सी, ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा, तैनूं सोधी नहीं है कि इना अमोलक श्वासां नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

0: राजन छिन छिले तब कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सगुण समेत हो।
1: गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज का अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख के कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं किते जा सकते। कतों हुंदे सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुत्ता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा, ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा, ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खो लैंदा, किते ओ वेद दा रूप बन जांदा, किते ओ तिन्ना गुणा दा रूप बन जांदा, किते ओ सर्व गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेड़े जागदी रूप जागदी जोत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहब विखे सुशोभित हैं। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाना जो महाराज साहब जी का असल अस्थान है, उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हैं। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा, संसार दे पदार्थ मिले लभणगे, बड़िया बड़िया वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां, साइंस इस दे विच है, संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं थां ते एक चीज नूं नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नूं थां नहीं, इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ झूठ नहीं, बाकी सब वस्तुआं संसार दीआं लभ लो इस दे विचों, पवित्र स्वरूप है, जागदी जोत है, इस दे विचों जिहड़ी वस्तु लभोगे, क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बड़े बड़े पदार्थ ने, लभण दी लोड़ है, लभ जाणगे मिल जाणगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसा पावन गुरु है। आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उदों बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी, ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल। ऐसे गुर को बल बल जाइए, रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे, शीश उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र सवारा होवे, ते कहिए महाराज तूं ते मुक्त हैं, सानू मुक्त कर दे, असी मैलां दे भरे होए हां, पापी जीव हां, सानू मुक्त कर सतगुरा, तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीस दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दियां मैलां रह जान, महाराज तू मुक्ति दा दाता है, आप मुक्त मोहे तारे, मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे। पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, हथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके, भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा, पूर्ण गुरु दा संग हो रहा, किते महसूस करो, किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना, किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा है। अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा है, किन्ना सुखदायक हुंदा है, किन्ना रिलैक्स मिलदा है, किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा है। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जांदे होए